0: बच्चों, तुम्हारे माँ बाप बड़े शैतान हैं। इन्होंने बार बार झूठ बोला, मगर मैंने पहली नज़र में पकड़ लिया था, है कि नहीं?
1: जी दादी।
0: देखा, वही सच निकला कि नहीं?
2: जी दादी।
0: अरे बच्चों, हमारी उम्र में वक्त नहीं लगता, एक झलक काफ़ी होती है ये पहचानने के लिए कि लड़के और लड़की के बीच क्या चल रहा है।

0: हेलो जेमी, राहुल आ गया अपनी एंट्री पॉइंट पर।
1: नहीं, राहुल तो यहाँ नहीं है।
2: अरे बॉबी भी राहुल यहाँ पर नहीं है। दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो? जाकर ढूंढो क्या प्लीज।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।
0: श्रुति श्रुति, राहुल मिला क्या?
3: नहीं मिला।
4: मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर है।